होगी मुगलाई, दर्द होंगे आंसू होंगे और होगी तन्हाई, हर एक साथ ये उलझन है, कहीं तंज है तो कहीं टेंशन है, हलवा हलवा छोड़ के बलवा मेरे भी।

फिरो तू किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।